0: नमस्ते, मेरा नाम अफरीदी भारती है और मैं धोध गांव से हूँ और आज मैं धोध गांव का गाना बजाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। Today we are going to present this song from Rajasthan called Dhod Pyaro. It is the song, it's about my father, how he started traveling to India to all over the world. Thank you.
1: Nous sommes vraiment heureux d'avoir Afridi de l'Inde, Rajasthan, chez nous. Il a appris une chanson, Dhod Pyari, écrite par son oncle. Et ça raconte l'histoire de son père qui arrivait comme musicien en Europe.